ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रंजना जी, देखिए फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी पूरी दुनिया में दिख रही है और जापान में तो इसका जोश आप समझ ही सकती हैं।
1: ये तो है, जापान की टीम का इतना बेहतरीन प्रदर्शन शायद ही कभी देखा हो। वो नॉकआउट राउंड में भी पहुंच गए।
0: अरे हाँ, ये तो है, खिलाड़ियों की वाहवाही तो हो ही रही है, साथ में जापानी फैंस भी आयोजन स्थल पर अपने व्यवहार से पूरी दुनिया का दिल जीत रहे हैं।
1: समझ गई, आपका इशारा स्वच्छता अभियान पर है ना। जापान के लोग मैच के बाद स्टेडियम में फैला कचरा उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
0: हाँ, हर जगह इसी नेक काम की चर्चा है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोचना कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसे लोग भी हैं? भला साफ सफाई के लिए कोई किसी की आलोचना कैसे कर सकता है।
0: हाँ, दरअसल कुछ लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि ये सब ढोंग है और दिखावा है, साफ सफाई की इतनी चिंता है तो अपने घरों में करें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जापानी पुरुष घर के कामों में हाथ कम ही बटाते हैं।
1: लेकिन मैंने देखा है कि जापान में लोग अपना कूड़ा साथ ले जाते हैं, तो ये एक संस्कृति की तरह है और इसमें कोई बुराई तो नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा, मैंने भी जब नकारात्मक टिप्पणियां देखी तो बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल चलते हैं आज के हमारे लक्ष्य की ओर और लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
1: जी, तो सबसे पहले उठा रही हूँ ये पत्र जो राम कुमार नीरज जी का है, आरा बिहार से। लिखते हैं, मुझे भारत और जापान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को समझने में गहरी रुचि है। मैं इन विषयों को आत्मसात करने और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी दिशा में मैंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो तैयार किया है।
0: अरे हाँ, राम कुमार जी ने इसका उल्लेख पहले भी किया था।
1: जी, लिखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने परमाणु शक्ति के इतिहास, हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में मानवता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को सोचने और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करना है। मैं भविष्य में भी भारत जापान संबंधों, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक विषयों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करता रहूंगा।
0: राम कुमार जी, आपके प्रयास वाकई काबिले तारीफ हैं। दरअसल आपका पत्र मिलने के बाद मैंने खुद इसे देखा और जितने विस्तार से इसमें न केवल जापान बल्कि भारत के पोखरण परीक्षण के बारे में बताया गया है वो काफी ज्ञानवर्धक है। और अब देखिए, ये अगला पत्र है केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं, आपके वेब पेज पर जापानी दल ने विकसित की आर्कटिक समुद्री बर्फ की मोटाई का अनुमान लगाने की विधि शीर्षक जानकारी पढ़ने को मिली, जो कि विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये नई विधि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। देखा जाए तो अब तक आर्कटिक समुद्री बर्फ की स्थिति का आकलन मुख्यतः उसके विस्तार के आधार पर किया जाता रहा है, जबकि उसकी वास्तविक मात्रा और स्थिति को समझने के लिए मोटाई का सटीक अनुमान लगाना भी उतना ही आवश्यक है। मेरी राय में इस चुनौती का समाधान खोजते हुए जापानी शोधकर्ताओं ने उपग्रह आंकड़ों, मौसम संबंधी जानकारी तथा बर्फ की गति के विश्लेषण को एक साथ जोड़कर एक अभिनव पद्धति विकसित की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में अनुभव कर रहा है। समुद्री बर्फ की मोटाई में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का समय रहते पता लगाना भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने

0: खुद आगे चलकर इस पृथ्वी को बचाने में अहम योगदान देगा।
1: सही में सुरेश जी की इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी भी लगती है। हर सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी समस्त मुद्दों को समझा जा सकेगा।
0: जी, अब ये अगला पत्र है पथिक जैन जी का जयपुर से। लिखते हैं, जापान में ऑटो रिक्शा के अंक को सुनकर ऐसा लगा कि अब जापान भी भारत के और निकट आ रहा है। जापान में पिछली शताब्दी के 5वें दशक में ऑटो रिक्शा चलते थे और अब लगभग 7 दशक बाद पुनः लौट रहे हैं। इसे समय की मांग कह सकते हैं, जहां महंगी कारें, सड़कों पर यातायात की भीड़ आदि को देखते हुए ऑटो रिक्शा कम दूरी के लिए परिवार के साथ घूमने में दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है। होरिकोशी जी के ऑटो का आधा भूरा रंग और ऊपर का भाग क्रीम रंग का, जो ऐसा लगता है जैसे कॉफी के ऊपर क्रीम और झाग हो, आकर्षक रंग लगा।
1: पथिक जी, टिप्पणी के लिए धन्यवाद। जापान में साइकिल का भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो और बच्चों को लाना ले जाना हो तो ऐसे समय में ये ऑटो काफी सुविधाजनक हो सकता है। मेंटेनेंस भी कम है। साइकिल से तो बेशक महंगा है, लेकिन कार रखने की तुलना में सस्ता है।
0: जी, फेसबुक पर भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उमेश कुमार शर्मा जी कहते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, ये जानकर आश्चर्य भी हुआ।
1: उमेश जी, होरिकोशी जी हमारी हिंदी सेवा के ही सदस्य हैं और वे धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं। भारत में भी रह चुकी हैं, इसलिए भी उन्हें ऑटो रिक्शा से लगाव है। और देखिए रंजना जी, कई और श्रोताओं ने भी इस रिपोर्ट को फेसबुक पर सराहा है, तो क्यों ना उनके नाम ले लेते हैं। ये हैं हेमराज, नवीन शर्मा, राघवेंद्र नौटियाल, लाल बाबू पांडे, मृणालिका ओझा, अशोक मोजित्रा, राजेश गिरी, मुरारी शाह। और विजय सुरलकर जी ने लिखा था कि वे जरूर सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। आप सबका दिल से आभार।
0: अब देखिए दुर्गेश नागनपुरे जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने 21 जून 2026 के चैरी के देशसे के बारे में लिखा है कि इस कार्यक्रम में योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको जी से बातचीत और श्रोताओं के पत्रों के उत्तर बहुत ही मनभावन लगे।
1: दुर्गेश जी, धन्यवाद सुनने के लिए और हमें लिखने के लिए।
0: श्रोताओं, अब पेश है आओ पकाए जापानी खाना, जिसमें आज हम बनाना सीख रहे हैं माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
2: दोस्तों, स्वागत है आपका आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में। आज हम बनाना सिखाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
3: और ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाकला विशेषज्ञ अकिको वातानाबे।
4: कोन्निचिवा, वातानाबे अकिको देसु। क्यों गो शोकाई सुरु माकी सुशी वा
2: नमस्कार, मैं हूं आकिको वातानाबे। आज हम बनाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल। किंडरगार्टन या स्कूल में बच्चों का पहला दिन मनाने के लिए अक्सर ये व्यंजन बनाया जाता है, या फिर बाहर खाने के लिए लंच का डिब्बा ले जाना हो तो भी ये व्यंजन बढ़िया है। इसे बनाने के लिए सब्जियों, मछली और दूसरी सामग्री को चावल की परत और नोरी यानी सूखी समुद्री घास में लपेटते हैं। आज हम डिब्बा बंद ट्यूना मछली, सब्जियों और तामागो याकी ऑमलेट का इस्तेमाल करके सुशी के रोल तैयार करेंगे।
3: ये व्यंजन हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सामग्री नोट कर लीजिए।
2: पहले सुशी मेशी, यानी सिरके वाले चावल बनाने की सामग्री। आपको चाहिए 300 ग्राम चावल, 2 कप या 400 मिलीलीटर पानी, और सुशी का सिरका बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक।
3: अब नोट कर लीजिए सुशी रोल के अंदर बनने की सामग्री।
2: इसके लिए तैयार रखिए 100 ग्राम गाजर और उसे सिमसिमाते समय डालने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 कप या 200 मिलीलीटर पानी।
3: ऑमलेट के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच चीनी, श्रुकी

0: नमक, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच पानी और पकाने के लिए एक छोटा चम्मच तेल।
1: इसके अलावा हमें चाहिए एक खीरा, 70 ग्राम डिब्बा बंद ट्यूना मछली और सूखी समुद्री घास यानी नोरी की 4 परतें जो 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले चौकोर टुकड़ों में कटी हुई हों।
0: तो चाहिए, अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सिरके वाले चावल तैयार करेंगे।
1: चावल पहले से पका कर रखिए।
0: अब सूजी के सिरका बनाएंगे। एक छोटी देगची में 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। उसके बाद लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक डोंगे में ताज़ा पके चावल डालिए और इस पर सब जगह समान रूप से सूजी के सिरका डाल दीजिए।
2: सूजी को आसे रु टोकी निवा कनाज़ गोहान गा अच्छी जोताई नी しないといけません。
1: सुशी का सिरका हमें गर्मा गर्म ताज़ा पके चावलों पर डालना है। अगर चावल ठंडे हो गए तो वो सिरका नहीं सोखेंगे।
0: चावल पर सुशी का सिरका डालने के बाद दोनों चीज़ों को जल्दी जल्दी मिलाइए।
1: सुशी के सिरके को 1-2 मिनट तक जल्दी जल्दी चावल में मिलाइए। इससे ज़्यादा देर मिलाने से चावल के दाने टूटने लगेंगे।
0: जब सिरका सारे चावलों में लग जाए तब पंखे से हवा करके चावलों को ठंडा कर लीजिए।
1: अब सिरके वाले इन चावलों को 4 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए।
0: इसके बाद बारी है सुशी रोल में भरने वाली सामग्री बनाने की।
1: तो पहले गाजर छील लीजिए और फिर उनके पतले लंबे टुकड़े इस तरह काटिए कि हर टुकड़े का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर हो।
0: गाजर के टुकड़ों को एक देगची में रखिए। 200 मिलीलीटर पानी डालिए और मध्यम आंच पर रख दीजिए।
1: जब पानी उबलने लगे तब आंच कम कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच नमक मिलाइए। अब डेगची पर फिर से ढक्कन लगाकर और 7 मिनट तक पकने दीजिए।
0: 7 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और गाजर के टुकड़ों को ठंडा होने दीजिए। इससे वो पानी का जायका सोख लेंगे।
1: इसके बाद हम तमागो याकी ऑमलेट बनाएंगे। तो पहले एक डोंगे में 1 बड़ा चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच पानी लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए।
0: फिर एक अलग डोंगे में अंडे तोड़ लीजिए और उन्हें अच्छी तरह फेंट लीजिए।
1: अंडे फेंटते समय ज्यादा झाग बनाए बिना सफेदी और जर्दी को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेंटने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके सिरों को बाईं से दाईं ओर आगे पीछे हिलाइए। इससे अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा।
0: इसके बाद वो सामग्री अंडे में मिला दीजिए जो हमने पहले मिलाकर रखी थी।
1: अब एक फ्राइंग पैन को मध्यम आंच पर गर्म कीजिए और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल सब जगह समान रूप से फैला लीजिए।
0: फिर अंडे का सारा मिश्रण एक साथ डाल दीजिए और जल्दी जल्दी चलाते जाइए।
1: जब अंडे का मिश्रण कुछ हद तक पक जाए तब फ्राइंग पैन का हत्था पकड़कर उसे अपने से दूसरी तरफ को झुकाइए ताकि अंडा दूसरे सिरे की ओर फिसल जाए। फिर इसे ऑमलेट की आकृति दे दीजिए और आंच कम करके अच्छी तरह पका लीजिए।
0: जब ऑमलेट ठंडा हो जाए तब उसके 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबे पतले टुकड़े कर लीजिए।
1: इसके बाद खीरे की बारी। खीरे को भी गाजर और ऑमलेट की तरह पतले लंबे टुकड़ों में काट लीजिए।
0: अब डिब्बा बंद ट्यूना मछली को डिब्बे से निकाल कर एक छलनी में डाल दीजिए और उसका पानी जलने दीजिए। इसके साथ ही सूजी रोल में भरने की सारी सामग्री तैयार है।
1: अब आया इस व्यंजन का सबसे जरूरी हिस्सा। तो पहले से कुछ चीजें तैयार रखिए। हमें चाहिए 1 डोंगा पानी, 1 साफ तौलिया और 1 माकिसु यानी सुशी रोल बनाने की बांस की छोटी चटाई।
0: तो पहले चटाई या कपड़े पर नोरी यानी सूखी समुद्री घास की एक परत रखिए। नोरी की चमकीली सतह नीचे की तरफ होनी चाहिए।
1: इसके बाद नोरी पर सिरके वाले चावल बिछाएंगे।
0: अब सिरके वाले चावलों के 4 हिस्सों में से एक उठाइए और उसे नोरी पर रख दीजिए।
2: 大事なのはご飯が平らに海苔に乗っていることです。ご飯が少ない。
1: चावलों को नोरी पर समान रूप से फैलाना जरूरी है।
0: सिरके वाले चावल नोरी पर फैलाने के बाद उस पर बाकी सामग्री रखेंगे।
1: सारी सामग्री सिरके वाले चावलों के बीचों बीच कतार से रखनी है।
0: और नरम सामग्री पहले रखनी है। चावल के बीचों बीच बाईं से दाईं तरफ चूना मछली की 1 सेंटीमीटर मोटी कतार बनाइए और फिर उसके बगल में ओमलेट के टुकड़ों की कतार रखिए।
1: मछली और अंडे के ऊपर रख दीजिए गाजर और खीरे की कतारें और अब बारी इन्हें नोरी में लपेटने की।
0: सुशी बनाने की छताई या कपड़े को अपने पास वाली सिला दोनों अंगूठों से पकड़कर उठाइए।
1: बाकी उंगलियों से सामग्री को अच्छी तरह पकड़े रहिए और फिर चटाई का अपने पास वाला सिरा दूर वाले सिरे के ऊपर ढक दीजिए। इससे चावल भरी नोरी का बेलनाकार रोल बन जाएगा।
0: रोल को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर उसकी आकृति ठीक कर लीजिए।
1: जहां नोरी के दोनों सिरे मिलते हैं उस हिस्से को नीचे की ओर रखिए।
0: अब हर रोल को 8 बराबर गोल टुकड़ों में काट लीजिए।
1: दोनों तरफ से सुशी के अंदर भरी सामग्री का सुंदर लाल पीला और हरा रंग दिखाई दे रहा होगा।
0: लीजिए माकी सुशी तैयार है।
2: माकी सुशी इकागा देशिता का? नोरी गा ते नी हाइरा नाई बाई वा तमागो याकी ओ।
1: तो दोस्तों क्या आप ये सुशी रोल अपनी रसोई में बनाकर देखना चाहेंगे? अगर आपके पास नोरी ना हो तो आप पतला ऑमलेट बनाकर उसमें भी सारी सामग्री लपेट सकते हैं। ऐसे रोल भी स्वादिष्ट लगते हैं और इनके लिए ऑमलेट आप तमागो याकी ऑमलेट वाले मिश्रण से बना सकते हैं। तो ये व्यंजन ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन्हें आप आसानी से पार्टी या दूसरे आयोजनों में ले जा सकते हैं और बिना हाथ गंदे किए मज़े से खा सकते हैं।
3: रंजना जी, माकी सुशी बनाने में काफी जटिल है, लेकिन इसमें पसंदीदा सामग्री डाल के अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं ना?
4: हाँ, मैं तो केवल खीरा डाल के बना लेती हूँ।
3: अच्छा, हाँ, खीरे वाली तो अच्छी है ना, गर्मियों में खासकर बहुत अच्छी है। और देखिए आज के कार्यक्रम में नीमी जी की आवाज सुनी ना, कितने सालों बाद और वो भी इस समय अपने सपने को साकार करने की दिशा में व्यस्त है ना
4: जी।
3: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम और अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
4: और रंजना सिंह को।
3: सायनारा, नमस्कार।